0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: भाई। आप ही रखो यार, आप हमेशा रख लो, ये बीच में रख लो हमेशा। अरे यार पब्लिक को यार,
2: तो यार ये आपको पहले सोचने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
3: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
2: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
2: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।

0: लुटे कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम, बस तुम।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो,
0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो,
2: कौन मैं? हाँ बस मैं ही तो हूँ इस वक्त पर आने वाली। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक और इट्स द सेम ओल्ड आफरीन। लेकिन हर रोज एक नई खबर के साथ और एक नए अंदाज के साथ वेलकम करती हूँ आपका ऑन द

0: शो मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, जैसे ही हम वेलकम करते हैं यहाँ पर, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहते हैं, लाइन ऑफ मैसेजेस स्टार्ट कमिंग हियर। वेल, गुड मॉर्निंग कहने वाले आज बहुत सारे लोग हैं। गुड मॉर्निंग कतर फ्रेंड्स एंड अ माइंड फिल्ड विथ हैप्पी पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है हरपाल संधू जी, आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग है। वेल, गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट टर्न्स ऑर्डिनरी मॉर्निंग इन टू प्योर सनशाइन। थैंक यू सो मच इमरान। वेल, यहाँ और कौन है, नाजीन जी का कहना है गुड मॉर्निंग, एंड विद दिस अगर आप भी कहना चाहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, तो 5000196 इज आर नंबर। लेट्स कनेक्ट हियर, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं और जरा वेदर का तापमान भी देख लेते हैं आज क्या कहता है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, वेदर आज गर्म तो लग रहा है बॉस, 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, 33 मिनिमम है। हालांकि आंकड़ों में तो वही टेम्परेचर दिख रहा है, लेकिन महसूस कहीं ना कहीं 48-47 के हिसाब से हो रहा है। और ह्यूमिडिटी आज बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप जैसे घर से ही निकले रहोगे और जो चश्मे पहनते हैं उनके चश्मे बिल्कुल फॉग हो जाते हैं, पूरी पूरा धुआं सा आ जाता है। सो वेल, ह्यूमिडिटी इसीलिए है ज्यादा, 76% ये कह रही है आंकड़ों में। With this, let's move on to the next track of this day, राजू चाचा मूवी से।
3: दिल का ये काम है,
0: अमित कुमार की आवाज में, and I wonder, why did अमित कुमार get more songs? है ना? Enjoy this lovely track on Mirchi It's Hot.

देखो मेरे ख्याल से जो म्यूजिक का एकदम सही परख करने वाला इंसान है ना, तो वो ये गाने को भूल नहीं सकता, जमाना लग जाएगा. बिकॉज मेट्रो इन दिनों कहिए या फिर लाइफ इन अ मेट्रो कहिए, हैज सच अंडररेटेड जेम सॉन्ग्स. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai, writer on this beautiful morning. It is a new week aur bas naye hafte ke saath mein, I'm sure aap logon ne weekend bade hi acche se guzara hoga. You've had a great time, good rest. That is what is more important. Matlab weekend mein rest karna behad zyada zaruri hota hai taki body jo hai phir se reset ho jaye ek naye hafte ke liye, and you have that bharpoor wali energy, hai na. Well, moving forward, let's talk about, yaar, weekend mein tumne ek kaam kiya ki nahi pehle wo batao. वो है सुहानिशा की टिकट्स बुक करना. मतलब मैंने कहा था थर्सडे को बस टाइम मिलने वाला है आपको वीकेंड पर, तो मस्त अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में डिस्कस करो और एक साथ में टिकट्स बुक करो. सो अगर नहीं किया है सो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यार अब तो कर ही देना चाहिए. क्योंकि यार नाउ चलो मंथ एंड भी आ गया है पास में, सो यू कैन नाउ ऑल्सो थिंक अबाउट इट. एंड नाउ जैसे ही सैलरीज खनकती है यू कैन बुक द टिकट्स. सुहानिशा कमिंग इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अमंगस्ट द बेस्ट मेंटलिस्ट इन इंडिया. वेल ये जो है ये 25 सितंबर होने वाला है शो, और ये शो जो होगा QNCC में होगा. आप इसके टिकट्स SCT स्नोनो सिटी से ले सकते हो या फिर Q टिकट्स पर भी आ चुके हैं. वेल अगर स्नोनो सिटी से लेते हो तो एक फ़ायदा और मिलता है आपको कि 30 कतरी रियाल का कैश बैक मिल रहा है वहाँ पर. क्या है ये ऑफर, कैसे, व्हाट ऑल, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट बॉस. मीनवाइल शाहिद माल्या, भानु प्रताप और बाबू हबी की आवाज में नए नए सिंगर्स के नाम सुन रहे हैं ना. उड़ता पंजाब से ये गाना एंजॉय ऑन मिर्ची.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग। मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग पर मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 7 बजे की तरफ एंड संजू राठौर अपना मस्त वाला गाना लेकर आए हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: खतरनाक।
1: वेल देखिए, दुनिया जितनी ज्यादा डिजिटाइज होती जा रही है, इट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स कन्वीनियंस, एंड नाउ सेम अप्लाइज टू ट्रैवलिंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये जो खबर मैं सुनाने जा रही हूँ, दिस इज फॉर द ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से कहीं पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले रहे हैं। ये खबर उनके लिए है दैट बोर्डिंग पास मैंडेटरी इमिग्रेशन स्टैंप, जो है स्टैंप की बात कर रही हूँ, बोर्डिंग पास पर वो डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। मतलब फिजिकल बोर्डिंग पास कंपलसरी नहीं है, फोन पर ई बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं और इमिग्रेशन क्लियरेंस डिजिटल बोर्डिंग पास के साथ ही हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहां ये है, इमिग्रेशन चेक्स खत्म नहीं हो रहे, दैट डजंट मीन दैट, ओके। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ वो जो बोर्डिंग पास का स्टैंप करते हैं वहां पर अननेसेसरी स्टेप जो है वो रिमूव हो रहा है। एक और ट्रैवलर टिप ये कहूंगी कि दैट ई बोर्डिंग पास यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन शॉट सेव करके रखिए, ब्राइटनेस आप बैटरी चार्ज, एयरपोर्ट पर नेटवर्क के नखरे दिख जाए, देन ये जो टेक्नोलॉजी का कन्वीनियंस है ना, ये वहीं पर खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली लेस पेपर, वन लेस चेक पॉइंट रिचुअल, एंड होपफुली अ स्लाइटली स्मूदर एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। वेल ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो रूल है, ये 1 सितंबर 2026 से लागू होने वाला है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, इसी तरह से इम्पोर्टेंट अपडेट्स दुनिया भर की, जगत भर की, एंड पहले तो हमारे कतर की लेकर आते रहूंगी, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और फिलहाल स्लो मोशन में एंटर करते हैं ये वीकेंड, ये वीक में वीकेंड मूड में अभी तक चल रही है आफरी लग रहा है। नगाज अजीज और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Gambala.
1: Murga, murga. La vizba la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
4: अच्छा तो दुबई जाना है.
3: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
3: आपने एकदम सही कह रहे.
4: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
3: नहीं बोलना नहीं बोलना.
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है आपसे.
4: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
3: सॉरी सॉरी सॉरी.
4: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
3: ओके ओके.
4: आई लव यू.
3: आई लव यू टू.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.
8: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट. गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

मुर्तजा कादर की आवाज़ में ये गाना राइटर और मिर्ची, और थोड़ा नॉस्टैल्जिया से आपको थोड़ा सा फ्यूचर में ले चलती हूँ। चलो और जहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो एआई की बात करना तो बेहद ज़रूरी है। और वेल ऐसा आजकल चल रहा है कि यार एआई से डर लगने लगा है, भाई कहीं जॉब वॉब ना खा ले। लेकिन नहीं बॉस, एआई से डरना नहीं है, एआई को साथ लेकर चलना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर बहुत बेखूबी कर रहा है, बहुत ही बखूबी कर रहा है दैट एआई की दुनिया में इट्स सीरियसली पंचिंग अबाउट इट्स वेट। वो ऐसे कि माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल एआई डिफ्यूजन डेटा में कतर वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में है व्हेन इट कम्स टू जनरेटिव एआई अडॉप्शन अमंग द वर्किंग एज पॉपुलेशन। यस, ये ग्लोबली जो है 10वें नंबर पर आता है। एंड इसका मतलब ये है दैट जिस तेजी से कतर इज अडॉप्टिंग एआई, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कतर ने एआई को सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछने तक लिमिट किया है, नो बॉस। एआई का इंटीग्रेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट सर्विसेज, यहाँ पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। एआई को एक्चुअली सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। सो वेल, यहाँ पर कतर हमारा जो है कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इट इज फ्यूचर रेडी, फ्यूचर में चेक इन कर लिया है। अब असली सवाल हम सब के लिए, एआई कितने लोग यूज कर रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एआई को कितनी इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हैं। बिकॉज हैविंग द टेक्नोलॉजी मेक्स यू डिजिटल डेफिनेटली, बट नोइंग व्हाट टू डू विद इट मेक्स यू फ्यूचर रेडी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: इट्स अ न्यू वीक, इट्स अ न्यू डे, 23rd of August, आज का दिन और नए दिन के साथ में आफरीन वही पुराने गेम में एक नया सा सीन लेकर आई है. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जहां सीन पहचानो और बताओ कौन सी मूवी से है ये.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: तुम्हें पता है मुझे आजकल रातों को नींद नहीं आती.
3: घर में मच्छर होंगे, मलेरिया हो सकता है, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ.
2: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था. मैं कहना चाहती थी कि तुम्हें पता है जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है?
3: हाँ, हाई बीपी, मतलब दिल की बीमारी, हार्ट फेल हो सकता है. घी मत खाओ और सुबह शाम जॉगिंग करो.
0: ऑलराइट, 5001896 इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड नॉट सो इजी टू गेस दिस मूवी फॉर श्योर. 5001896 व्हाट्सएप नंबर बता दिया मैंने फिर से. और ये मूवी के बारे में एक आधा दो हिंट तो मैं दे ही सकती हूँ, जहाँ पर हमारे जो एक्टर है, ऑफकोर्स ये तीनों खान में से एक खान है जो ये मूवी में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं. Now that's got easy for you, right? बहुत easy हो गया. चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. जावेद अली की आवाज में ये next track coming up. और ये गाना मुझे बड़ा cute सा लगता है. Enjoy it. माइक से दिल तक आफरीन के साथ.

0: वॉज माई को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग करी यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई. पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी.
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
3: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन

0: तू।
1: और यहीं पर आपको भी मुझे रुकाना पड़ेगा क्योंकि आफरीन जो है फिर सवाल पूछने चली है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट इज मिर्ची मॉर्निंग्स सिंपली आफरीन का साथ राइट हियर। और देखिए भाई, सवाल पूछा था मैंने आपको, इनफैक्ट रादर सवाल सुनाया था, आपने गेस करना था कि आखिर ये कौन सी सीन है, कौन सा मूवी है। एंड साथ ही साथ आई थिंक सो आई थ्रू अराउंड अ वेरी बिग हिंट, और उसकी वजह से क्या है ना, आप बहुत लोग एकदम सही जवाब दे दिए हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, चलो रेडियो सेट्स का वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये डायलॉग सुनो बॉस।
2: लाइट कैमरा सीन टेस्ट।
3: तुम्हें पता है मुझे आजकल रातों को नींद नहीं आती।
4: घर में मच्छर होंगे, मलेरिया हो सकता है, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ।
3: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि तुम्हें पता है जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है?
4: हाँ, हाई बीपी, मतलब दिल की बीमारी, हार्ट फेल हो सकता है। घी मत खाओ। और
1: ऑलराइट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जहाँ लड़की अपने दिल का हाल सुनाने की कोशिश कर रही है, लड़का पूरी तरह से उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। कौन सी मूवी है ये? आई थ्रू अराउंड अ नाइस हिंट के ये जो मूवी में है, हीरो इज अ पुलिस ऑफिसर। 5000186 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी भी आप जवाब देना चाहते हो तो मैसेज करिएगा, वॉइस मैसेज में सुन नहीं पाऊंगी। सो बहुत सारे लोगों के आंसर्स आए हैं, कुमार, त्रिशा, सोनाली, देन आई हैव योर, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, मंगेश, एंड देन ये कौन है, चार्ली का मैसेज आया है, देन आई हैव फिरोज अली, देन आई ऑल्सो हैव अब्दुल अजीम मोहम्मद, देन अख्तर है, मोहम्मद यूसुफ खान है, मोहसिन है, एंड सो मेनी मोर। कुंवर पांडे, इनका भी मैसेज आ गया है, मोहम्मद अमर का मैसेज आया है, एंड यस, व्हाट इज द आंसर पहले वो तो सुने, मैं थोड़ी बताऊंगी, वो आप ही तो बताएंगे।
5: हाय आफरीन, गुड मॉर्निंग मिर्ची।
1: वेरी गुड मॉर्निंग।
5: द सीन व्हिच यू हैव टोल्ड इज फ्रॉम मूवी सरफरोश,
1: ऑलराइट,
5: आमिर खान एंड सोनाली बेंद्रे, एंड इट इज जस्ट बिफोर द सॉन्ग ऑफ इस दीवाने दिल को। दिस इज चेतन।
1: ओके,
6: गुड मॉर्निंग,
1: थैंक यू चेतन।
6: रोहन,
1: ओके,
6: मूवी का नाम है सरफरोश, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे।
1: बिल्कुल सही जवाब, और साथ ही साथ अभी जस्ट नाउ कमर का भी मैसेज आया है, और देन हु इज दिस मोहम्मद इमाम का भी मैसेज आया है सेइंग दैट इट इज सरफरोश। और जहां सरफरोश मूवी से मैंने गाना प्ले करना था, हैड सो मेनी गुड ऑप्शंस एंड आई वाज एक्चुअली कंफ्यूज कि इस दीवाने लड़के को ये बजाऊं या होश वालो, बट आई थिंक सो मेरा दिल जो है ये गाने पर आके अटक गया है, एंड आई एम गोना प्ले दिस ट्रैक फॉर यू। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आई लाइक दिस गिटार वाली स्टार्टिंग, या
7: जो हाँ
1: एंजॉय दिस वंडरफुल ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: school.
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
3: Abhi, Mirchi helpline se baat ho rahi hai.
4: अरे बोलना मामू मिर्ची हेल्पलाइन व्हाट इज द क्वेश्चन.
3: अरे भाई मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ. घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा. अब क्या करूँ भाई मैं.
4: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6 की तरफ आफरीन का साथ है आपके साथ और अगला गाना रेमो फर्नांडिस की आवाज में इट्स गोना टेक यू टू दिस 90s इंडी पॉप का एरा एंड यू आर गोना एंजॉय दिस गारंटी है मेरी वाली एंजॉय ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

Well, Ramon Fernandez का ये गाना, I'm sure brought back so many old memories कि आपने ये गाना शायद TV पर सुना था जब MTV और Channel V आया करते थे and then we used to watch such beautiful indie pop songs यार, good old days यार, मजा ही आ जाता था. Well, moving ahead कि चलिए थोड़ा सा 90s से अब एकदम अभी के time पे right now present में लेकर आती हूँ, जहाँ पर शाहिद कपूर की ये नई movie का अगला गाना मैं जो सुना रही हूँ आपको, that is Cocktail 2 which has already come on OTT platform in case you have not watched it. So Netflix पर Cocktail 2 आ चुकी है, देखना है, देख सकते हैं अगर आप वो कैटेगरी में से आते हो कि नहीं भाई मूवीज हम थिएटर में जाके देखेंगे ही नहीं यार, अब भी दो महीने में आने वाली है, पेशेंस होता है, आप रुक जाते हो तो देख लीजिए. महमूद राघव, चैतन्य एंड रुके की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक ऑन विल शी इट्स हॉट.

0: वेल कॉकटेल टू का ये गाना राइट हियर ऑन विल्शी। और बस हमारे बॉलीवुड में ना अब बहुत सारे जॉनर्स हो चुके हैं, एक्शन हो गया है, रोमांस हो गया है, हॉरर पे भी कई सारी मूवीज आ गई है। नाउ इट्स टाइम कि सीधा अब हीरो ना एलियन से ही पंगा लेने वाला है। And that's actually true, man. क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट खबर है ना, मेरी अंदर की खबर, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, क्वाइट लिटरली।
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: चल, अंदर की खबर तो कुछ ऐसी है। अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म का नाम है समुक, एंड रिपोर्टेडली इट्स एन एलियन सर्वाइवल थ्रिलर। मतलब खिलाड़ी कुमार अब अपने करियर में एलियंस की भी एंट्री डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो शूटिंग है, इनफैक्ट आज से ही 23rd of August टुडे लंदन में शुरू होने वाली है, एंड मूवी ऑलमोस्ट 90% ना वही शूट होगी। वेल, ये मूवी डायरेक्ट कौन कर रहा है? वेल, डायरेक्शन का तो मैंने अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन प्रोड्यूस जो है वो विपुल अमृतलाल शाह कर रहे हैं। विपुल शाह जो है अक्षय कुमार के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। वक्त मूवी आई थी उनकी, बहुत मजे की मूवी थी, अच्छी मूवी थी। वेल, ये जो मूवी है समुक, ये 2027 थिएटर्स में आ जाएगी। मीनवाइल संजय लीला भंसाली की तरफ जरा जाते हैं, और उनकी जो लव एंड वॉर स्टारिंग रणबीर कपूर, आलिया और विकी कौशल, ये फाइनली अभी अगस्त एंड तक ना ये रैप अप होने वाली है, जस्ट एंड की तरफ ही है। एंड भंसाली साहब ब्रेक लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से मधुबाला बायोपिक स्टारिंग सारा अर्जुन, इस पर काम शुरू हो सकता है। सो ऐसे ही बॉलीवुड की अंदर की खबर भी आफरीन लेकर आती रहेगी राइट हियर ऑन मिर्ची। और अगला गाना मुसाफिर कैफे का ये गाना, बड़ी नमकीन रेखा भरद्वाज की आवाज, राघव कौशिक का साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता
2: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
2: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा, फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। टीएनसी सप्लाई।
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

canım. Vişal Müşra ki yavaz ve romantik sagana right your own with she. Aferin aferin. Simply aferin. Aferin aferin. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और देखिए वक्त हो चला है, इसे जरा इम्पोर्टेंट बातें करें. यानी मनी टॉक्स यार, और इससे इम्पोर्टेंट क्या ही हो सकता है. देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.24. क्या बात है, अच्छा रेट मिल रहा है. देखो आईपे का जो ऐप यूज करते हो ना, इस पे बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं एंड इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप. पाकिस्तानी रुपीस ही देख लीजिए 76.19 पर है. बांग्लादेशी टाका जो है वो 33.49 पर है. श्रीलंकन रुपीस की तरफ अगर देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो एट 90.44 आई थिंक. सो ये भी अच्छा खासा बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों से. और नेपाली रुपीज I think so looking constant at 41.91. ये थी आज की एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला एज आई ऑलवेज से 89.6 मिर्ची वन पर माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ. इट्स हॉट.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज और ये गाना फ्रॉम द मूवी पद्मावत, एंड आई जस्ट लव दिस ट्रैक ऑफ अरिजीत सिंह, जो मुझे लगता है काफी अंडररेटेड है ये गाना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स अ न्यू वीक, इट्स अ न्यू डे, और अरिजीत सिंह की आवाज़ का जो सिलसिला है हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वक्त हो चला है कि मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोला जाए। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, और आज मेरे मिस्ट्री बॉक्स में से निकली है एक ऐसी धुन जो आपको इशारा करेगी एक गाने की तरफ जो आपने गेस करना है, ठीक है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये धुन सुनो और मुझे बताओ कि आखिर ये गाना है कौन सा बॉस। और ऐसा कई बार होता है कि आप धुन सुनते हो और ऐसे मुंह पे आपके बस आने वाला होता है और आता नहीं है, ऐसी कुछ हाल होगा शायद। 5000196 व्हाट्सएप नंबर पहले बता रही हूँ, बाद में भी बताऊंगी, लेकिन पहले धुन सुन लीजिए। All right, enough, इससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगी मैं, ठीक है। बताइए मुझे कौन सा गाना है ये। 5000196 व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दिया है, फिर से सुनना चाहते हो क्या धुन? चलो ठीक है, आपके लिए सुना ही देती हूँ। ओके, बहुत सारी मेमोरीज फ्लैश हुई है, शायद ये गाना आपका फेवरेट वाला भी हो सकता है, आई एम श्योर।
1: हवाओं में बहे,
0: चलो सोचो, तब तक के लिए अगला गाना सुनते सोचो। अरिजीत सिंह की आवाज में कलंक का टाइटल ट्रैक और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो...
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात कर करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड Only on Mirchi, it's hot.
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: फेस की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची और जुड़ गई है आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रिन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखो ना, बीच बीच में आपको मैं प्रेजेंट में भी लेकर चलती हूँ, कतर की खबर भी सुनाती हूँ, आने वाली बॉलीवुड की खबर भी सुनाती हूँ, जहाँ फ्यूचर में भी ले चलती हूँ, और फिर मैं आपको एकदम से घसीट के सीधा नॉस्टैल्जिया में डाल देती हूँ, यानी 90s में डाल देती हूँ। और वो कैसे? वो हमारी गेम के थ्रू। देखिए मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स पर आज एक ऐसी धुन है जो आपको सीधा 90s नॉस्टैल्जिया याद दिलाने वाला है। व्हाट इट इज, ये धुन पहचानो, गाना पहचानो, हियर इट इज। ऑल राइट, इट वॉज इजी पीजी वैसे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कई बार होता है कि यार ऐसे मुंह पर आने वाला गाना याद ही नहीं आता है कि कौन सा है। बट ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से हमारी ये लिसनर के साथ हुआ है।
1: आई थिंक दिस सॉन्ग इज
0: रियली ट्रैक कोई गलत पकड़ी है आपने। लेट्स सी, गुड मॉर्निंग। हाँ सुधीर,
2: अभी आपने एक म्यूजिक सुना के
0: हाँ जी
2: गाना गेस करने के लिए बोले थे, एंड द सॉन्ग नेम इज ए मेरे दिल तू आया समथिंग।
0: ओके, लेकिन गाने का नाम क्या है, इनिशियल नाम ये हमें।
3: हाय आफ्रिन, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिंसन हियर।
0: हां प्रिंसन,
3: द सॉन्ग इज एक पल का जीना फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, ग्रेट मेमोरीज।
0: हां सी, आई
3: थैंक यू फॉर द म्यूजिक एंड हैव अ लवली डे।
0: यू टू हैव अ लवली डे प्रिंसन, एंड थैंक्स फॉर द मैसेज। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। यहाँ पर ताहिर का मैसेज आया है, देन आई हैव योर रोहित मैसेजिंग मी, और भाई देखो नाम नहीं लिखोगे ना तो मैं नहीं बता पाऊंगी। इमरान का मैसेज है यहाँ, एंड देन आई ऑल्सो हैव हुज दिस भाई, इतनी सारी बातें भेजी हैं यहाँ पर, इतने सारे ये जिफ भेजे हैं अबाउट दिस मूवी, बट नाम नहीं भेजा है, कोई बात नहीं। सो वेल, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और कई सारे मैसेजेस विदाउट नेम भी आए हैं। तो अफशान का भी मैसेज है यहाँ पर, ताहिर का भी मैसेज है जैसे मैंने बताया, और कौन है, शुभम रस्तोगी। सो यस, इट इज कहो ना प्यार है से ए मेरे दिल तू, एक पल का जीना। और ये गाने में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन लगते ही है, ऋतिक रोशन का डांस लगता है, लेकिन लकी अली की आवाज भी लगती है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दैट ट्रांसल्यूसेंट सच टी शर्ट जो ऋतिक रोशन ने ब्लैक पहना था, ब्लैक चश्मे के साथ, और क्या ट्रेंड बन गया था भाई साहब, गोन आर दोज डेज जहाँ हीरो के कपड़े एक्चुअली ना कॉपी किए जाते थे और फिर से पहने जाते थे। अब कहाँ होता है यार। सो लेट्स डाइव ऑन टू द सॉन्ग कहो ना प्यार है से, लिखिए इनकी आवाज में और मिर्ची इट्स हॉट।

0: driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
1: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
3: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ राइट हियर और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:01 की तरफ एंड के हनी सिंह और शिफ अली की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है मिर्ची इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

Well, देखो बच्चों, पार्टी का टाइम तो एक्चुअली आपका खत्म हो गया है. इट्स टाइम अप एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू स्कूल. वेल, बिफोर वी डाइव इन टू द स्कूल और बैक टू स्कूल के मूड में जाए, एक पार्टी तो लास्ट बनती है ना बॉस, वो भी मिर्ची टीम के साथ. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आप टीम का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स एंड बैक टू स्कूल, जहां हर जगह आपको ये बैक टू स्कूल नजर आ रहा है, शॉपिंग मॉल्स में है एंड एवरीवेयर. और ऐसे में मिर्ची के साथ अगर आप बहुत साल से जुड़े हुए तो आपको पता है मिर्ची ऐसी बच्चों को थोड़ी ना भेजेगा स्कूल. मिर्ची अच्छे से एकदम पार्टी करके मजे से भेजेगा. So well, back to school का इवेंट हमारा मिर्ची का होने वाला है यही वीकेंड पर. अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जब मिर्ची का इवेंट आता है ना, बहुत लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस होती हैं एंड यू हैव टू बी रियली क्विक फॉर रजिस्टरिंग. और पहले मौका ना तो हम हमारे रेडियो के लिसनर्स को ही देते हैं, फिर हम सोशल मीडिया पे डालते हैं. तो रेडियो के लिसनर्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, मिर्ची का बैक टू स्कूल इवेंट दिस वीकेंड होने वाला है और उसके लिए आपको क्या करना है, 5000196 पर व्हाट्सएप करना है आप के बच्चे की उम्र और लिखना है बैक टू स्कूल, ठीक है, बच्चे का नाम के साथ में ऑफ कोर्स. सो उसके बाद क्या, हम आपको एक लिंक भेजेंगे एंड यू कैन रजिस्टर योर किड देयर ऑन दैट लिंक एंड वेरी लिमिटेड सीट्स एज आई सेड. तो फटाफट से 5000196 पर व्हाट्सएप करो आपके बच्चे का नाम, उम्र एंड बैक टू स्कूल. मीनवाइल सुबह शर्मा की आवाज में जुनून, ये गाना जुनून तो है लेकिन बड़ा ही सॉफ्ट वाला जुनून लग रहा है. अनमिर्ची साथ

0: Mirchi.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था,
2: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तो तुझसे
2: वाली बातें कर रहा,
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है? नहीं,
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल जा, चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
6: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

शाल मलिक होलगड़े की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची और परेशान तो देखो बाद में जाकर आप हो सकते हो। देखो अगर आप आओ तो भी परेशान, ना आओ तो भी परेशान। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सर क्या बात कर रही है आफरीन? वेल आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह का जो शो है, एंड बाय नाउ आई थिंक सो आधा कतर तो जान ही चुका है कि सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट है। कतर आने वाली है पहली बार, इंडिया की नामचीन मेंटलिस्ट में से जानी जाती है। और परेशान कब होंगे आप? परेशान पहले तो तब होंगे अगर आप टिकट नहीं निकालोगे और फिर ये प्रोग्राम मिस कर दोगे, एंड देन यू विल बी लाइक अरे यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये स्टोरी देखी वो स्टोरी देखी, और फिर जो लोग जाकर आए हैं वो बताएंगे कि अरे उसने ऐसा किया, एंड देन आप परेशान हो जाओगे ये सोचकर कि हमने पहले क्यों नहीं टिकट्स ली। इसलिए बता रही हूँ बट क्यू टिकट्स और एस सिटी, यानी सुनो सिटी इज द प्लेस वेयर यू गो एंड बाय द टिकट्स। और परेशान वो लोग भी होंगे जो ये इवेंट अटेंड करेंगे। अब वो कैसे? ये सोचकर कि अरे भाई साहब इसने ये किया कैसे बॉस, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, इज दिस ट्रू? नहीं मजाक कर रही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। You are going to think so many permutation combination and बस कह रही हूँ कि भाई मजा ही आने वाला है। और पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले कोई mentalist का show देखा है? Yes or no? 5000 1896 पर मुझे बताइए। Yes हमने ये देखा है इसका show, No हमने बिल्कुल नहीं देखा है। तो बस अगर आपने देखा है तो भी आपको आना है कि आप तो जानते हो mentalist के show पे कितना मजा आता है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आपका तो बनता ही है ना कि भाई आपने तो अभी तक एक भी मेंटलिस्ट शो अटेंड नहीं किया है, तो ये तो बॉस बनता है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं स्टीरियो नेशन की आवाज में। और

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: पापोन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और जानते हो मोहब्बत का अपोजिट क्या होता है? नफरत। मुझे नहीं लगता। मोहब्बत का अपोजिट होता है कभी कभार बेपरवाह हो जाना। जब सामने वाले से शिकायत भी खत्म हो जाए, सवाल भी खत्म हो जाए और फिर एक वक्त के बाद फर्क पड़ना भी खत्म हो जाए। इसी फीलिंग को बड़े खूबसूरती से इस शायरी में लेकर आई हूं मैं।
2: आफरीन की डायरी से शायरी।
1: तो अर्ज किया है कि एक अदा पे शुरू एक अंदाज पे खत्म होती है। एक अदा पे शुरू एक अंदाज पे खत्म होती है। नजर से शुरू मोहब्बत नजर अंदाज पे खत्म होती है। हाय, नजर से नजर अंदाज तक बस इतना सा फासला होता है कभी कभी दो लोगों के बीच। और शायद किसी रिश्ते में आर्ग्यूमेंट से ज्यादा फिक्र तब होनी चाहिए जब आर्ग्यूमेंट्स भी होने बंद हो जाए। माइक से दिल तक आफ्रीन है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के आंखों में खुली हो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

श्रुति मानी की आवाज में ये गाना कोई सहरी बाबू राइट ऑन मिर्ची वेल देखो ये जो गाना है वैसे तो पुराना गाना है रेट्रो गाना है जिसका रीमिक्स बना है और देखिए ये अभी 20s वाला ये अभी 2021 का शायद ये वर्जन है लेकिन हमारे टाइम पर भी ना इसका एक वर्जन आया था जो 90s इंडी पॉप में आया था क्या आपको याद है एक म्यूजिक वीडियो भी था इसका आई मीन देयर वाज सो मेनी रेट्रो सॉन्ग्स नहीं जिसके बहुत ही मज़ेदार म्यूजिक वीडियोज आते थे 90s इंडी पॉप के होते थे ऐसा अगर कोई आपको याद आ रहा है देन डू टेल मी या मीनवाइल जनरली मैं यहाँ पर नॉस्टैल्जिया प्रेजेंट और फ्यूचर में जीती रहती हूँ जहाँ पर नॉस्टैल्जिक बातें भी होती हैं आपको नॉस्टैल्जिक गानों के साथ में जोड़ती हूँ फिर प्रेजेंट न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ जहाँ पर कतर की खबरें के बारे में लेकर चलती हूँ एंड देन फ्यूचर के बारे में भी बताती हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा इवेंट आने वाला है और उसके साथ में आपको जुड़े रहना है जैसे हमारे फ्यूचर इवेंट्स तो बहुत सारे लाइंड अप है देखो मिर्ची के एक तो बैक टू स्कूल इवेंट जो अभी आने वाला है दिस वीक ओनली उसके बाद में सुहानी शाह का इवेंट आने वाला है जो सेप्टेम्बर में होगा 25th ऑफ सेप्टेम्बर जिसकी टिकट्स क्यूट किड्स और सोनू सिटी पर मिल रही है सो वेल हो गए हैं मेरे सारे टेंसेस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो मैं चली और मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो 6 से 10 मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिंपली आफरीन माइक से दिल तक आपके साथ जुड़ने वाली है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टाटा बाय बाय सायोनारा और सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट

Well, Hariharan and Kavita Krishnamurti ki khoobsurat si awaaz, and what a soulful track it is. Kya khoobsurat sa gaana. Matlab sach kahun yaar, 90s ke gaano mein wo ek aisi kashish hai na jo bahut achhi tarah se jaanti hai ki kis tarah se ek listener ko sirf entertain nahi kiya jaye balki gaane ka asar jo hai uske dil tak seedha pahunchaya jaye. Mirchi Anshu. Hello, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. Naye hafte ki shuruaat aap aur hum milkar karne ja rahe hain. Lekin itna bata dun, dil tak utarne wali baat ki agar main baat karu to ha, ye baat jo hai na, dil mein uteregi nahi, lagegi bhi. Finally, wo aakhri hafta hamari zindagi mein shamil yani ki shareek ho chuka hai jab aap jo hain bahut sare pachdon ke beech khud ko dekh rahe hain ya pa rahe hain. Khaas kar agar main mahilaon ki baat karu, ladies ki baat karu, ek अभियान जो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मिसिंग रहा है ना ये पूरे के पूरे दो महीने, तो वो है आओ बहन चुगली करे. भाई साहब, जब तक पति घर पे हो, बच्चे घर पे हो, ये पलटन निकले तो निकले कहां से. वैसे काफी हद तक स्नीक आउट करने की तैयारी हमने की थी, बीच बीच में किया भी था, लेकिन दिल खोल के अब चुगली जो है ना अब होगी. वेल, लास्ट वीक बिफोर स्कूल्स रिज्यूम एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट बी रियली एक्साइटेड. जहां पर बैक टू स्कूल की तैयारी जो है जोर शोर से कतर के कोने कोने में, हर एक मॉल्स में, ऑफिस के जरिए चल रही है, वहीं दूसरी तरफ घरों पे भी इसकी प्रिपरेशंस जो है ना वो शुरू हो ही चुकी है. लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी, अगले एक हफ्ते में जहां महिलाएं अपना अभियान अलग चलाएंगी, वेल टू ऑल दी मेन एंड वर्किंग पीपल, इंश्योर कि आप जो है अपने घर से 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निकले, क्योंकि रास्ते जो है आप कोई और ऑक्यूपाई करे ना करे, लेकिन हाँ, ये बच्चे और उनकी बसेस जो है ना ये जरूर करेंगी. चले जी, ये प्यारे से अपडेट के साथ इस वक्त संजू राठौड़ की आवाज में आपकी जिंदगी में तड़का ऐड करते हैं, यानी अगला गाना शामिल करते हैं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Navirva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
3: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप
3: ही
2: रखो यार, ये आप मतलब हमें रख लो, ये बीच
3: में यार। ये आपको पहले सोने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने बनाया, ठीक है ना?
3: हाँ?
2: भैया पैसे भाड़ मगा।
3: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: अरिजीत सिंह एंड पलक मुच्छल की खूबसूरत सी आवाज़, क्या खूबसूरत सा गाना है यार। मतलब ऐसे गानों को आप हजारों दफा सुने नहीं तो फिर क्या करें, एक बात बताएं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार पता है क्या, अगर मैं अपनी कहानी बयां करने की कोशिश करूँ ना, आई एम अ प्रॉपर मूवी बफ। अगर मैं फिल्मों को देखूं तो फिल्में जो हैं मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। एज एन अच्छी कहानियों का असर जो है मेरी ज़िंदगी में होता है, मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हूँ। सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं, फिल्मों में कही हुई बातें, उनमें बताई गई स्टोरीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, ज़रूर बनती हैं। एंड अगर गानों की बात करूँ, भैया ये जो बंदी है ना, एक्चुअल में पूरी तरह से फिल्मी है, क्योंकि मुझे गाने ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं लेकिन जैसा मेरा मूड होता है मैं उस हिसाब से गाने सुनती हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे मोटिवेशन इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली मेरी जो प्लेलिस्ट है ना पूरी की पूरी उस हिसाब से क्यूरेट होती है जो ऑर्गेनिकली मेरे मूड को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर आपके मूड को चेंज करने की बात करें, आपकी ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन को छोड़ने की बात करें, तो भाई ये शख्सियत जो है पूरी तरह से तैयार है ये काम आपके लिए करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर फुल्ली रिज्यूविनेट होकर तो आप आ ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त आपके दिमाग के खाने खोलने का काम आपके लिए कोई करेंगी तो वो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट मैजिशियन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह, लाइव इन कतर, हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑन 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। टिकट्स जो हैं सारी लीडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। अभी तक अगर अपनी टिकट्स बुक नहीं की, अभी भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट बिल्कुल चल रहा है, जाइए अपनी टिकट्स जो है वो सिक्योर करके आइए। 20% ऑफ ऑन ऑल कैटेगरीज, इनफैक्ट 160 रियाल्स में आप दो टिकट भी अवेल कर सकते हैं, चाहे आप क्यू टिकट्स में बुक करें या स्नूनू सिटी में बात करें। लेकिन स्नूनू सिटी से बुक करने के लिए एक एडिशनल बेनिफिट ये है, स्नूनू एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप स्नूनू सिटी से बुक करते हैं तो आपको 30 रियाल्स का उसमें कैशबैक भी मिलेगा। मौका हाथ से निकले, कोई लोचा उल्फत हो उसके पहले जाएं अपनी टिकट्स जो है वो सिक्योर करके आएं। वैसे बेनी दयाल की आवाज में कोई तो लोचा है जो जरूर हो रहा है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: शान की खूबसूरत सी आवाज, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। मतलब कुछ बातों को भूल जाना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाती है भाई, उन्हें इंसान भूले तो किस तरह से भूले मुझे आप बताएं। तो बस ये एक बात बताएं, बस एक बात बता दूं, कुछ बात आपको हमेशा के लिए याद रहे इसकी तैयारी जो है मैंने कर ही ली है।
1: मिर्ची अंशु
0: हाला, क्या हालचाल जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को बेहद हसीनन खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड अगर ऐसी खूबसूरत यादों की बात करूँ तो सीधा मेरा दिल और मेरा दिमाग कहीं जाता है तो वो है मेरे बचपन के दिनों में। यार क्या खासियाँ, क्या कमाल दिन हुआ करते थे, खासकर वो स्कूल टाइम्स, यू नो वो बेफिक्री के दिन। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि स्कूल एक ऐसा अड्डा ठौर ठिकाना होता था जहाँ जाने के लिए, जहाँ पहुँचने के लिए ना घर वालों को कभी कोई जद्दोजहद ना करनी पड़ी। मतलब कभी मैं मार ना खाई कि बेटा जा तू स्कूल जाए। इनफैक्ट संडे आता था तो हम वेट करते थे कि भाई क्यों ये छुट्टी आई, तो क्यों ही आई। यार स्कूल में ना जाने कितनी मस्तियाँ की हैं। क्या आपने क्लास के बीच चलते क्लास में लंच बॉक्स खोलकर टिफिन खाए अपना, नहीं किसी और का? हमने ये सारे काम ना बहुत किए हैं, किसी और के बैग से टिफिन गायब करना, वो टिफिन खाना। एंड अगर पता चल जाए कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई एक शख्स है जिसने अपनी बुक लेकर ना आया है, तो भैया देखो पूरी की पूरी वो गैंग है ना किस तरह से अपनी अपनी किताबों को छुपाने में या किसी और के बैग में डालने में लगती थी, क्योंकि पता होता था कि भाई जब हमारे दोस्त को पनिशमेंट के तौर पर बाहर निकाला जाएगा तो हम तो 100% जाएंगे ना, हम अकेले थोड़ी ना क्लास में बैठ के पढ़ाई करेंगे। वेल दोज आर द डेज दैट ट्रूली cannot be forgotten at all. Having said that, back to school आते ही ये सारी बातें उस वक्त मेरे जहन पे आ रही हैं। एंड बहुत जल्द आपको ये बता दूं, मिर्ची back to school, जिसका इंतजार आपको और हमको जरूर है, वो आपकी जिंदगी में शामिल होने वाला है। हम जो है जल्द से जल्द आपके बीच सर्कुलर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट, जितने जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना ही आसान आपको मौका होगा कि आप मिर्ची के इस मैग्नानिमस इवेंट का हिस्सा बन सके, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करा सकें। बट Stay tuned, आग लगाना। कविता सेठ नमिता भट्टाचार्य की आवाज में एक तारा, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
2: नहीं यार, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
1: किसी दिन वरदान आके पूछे पापा एक्टिंग या मैं
2: ये क्या सवाल है
3: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं
4: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोलडा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: सिंह की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, एंड जरा ये देख लूं कि आपको ये बात पता है या नहीं पता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hello, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड बस ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये बात जो है पता है या नहीं पता है। यार ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी मुझे ये मौका मिलता है कि मैं आपसे कुछ सुन सकूँ, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक पड़ सके, तो भाई खुशी होती है, अपरंपार खुशी होती है। तो चलिए इसकी एक मुहिम एंड कोशिश जो है मैं फिर से आपके बीच कर ही लूँ। अब कोई तो बॉलीवुड की एक बहुत खास एंड प्यारी सी फिल्म है जिसका थीम म्यूजिक यानी कि बैकग्राउंड स्कोर जो है मैं आपके बीच पेश करूंगी। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, साथ मुझे ये बताना है कि ये थीम म्यूजिक है तो आखिरकार बॉलीवुड की कौन सी आइकॉनिक फिल्म की है। एंड सच कहूं, मैंने इतनी धुनें सुनी है, मेरे कानों तक पड़ी है, लेकिन जो सुकून एंड जो राहत मुझे इस म्यूजिक ने दिया ना, मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मुझे किस दूसरे म्यूजिक से मिला हो। एंड अगर करेक्ट आंसर पता चल जाए तो मुझे जल्दी से आप भेजेंगे 5000186 पर, 5000186। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो। भाई अगर ये ना जाना, ये ना पहचाना तो फिर क्या ही माना। वैसे इस फिल्म में कुछ तो और है जो बहुत अच्छा लगता है, चलिए वो भी एक बार आप तक पहुंचाऊं मैं। Alright, after this short break and ad, I'll get back to you. Meanwhile, आप जो है अपने करेक्ट आंसर्स को पहुंचाने की तैयारी मुझ तक करें 5000186, 5000186। ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये थीम म्यूजिक आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी।

राइट यू, आप जल्दी से करेक्ट आंसर भेजें, मैं ट्वीट के तौर पे आप तक ये गाना पहुंचाऊंगी। मीनवाइल हनूर एंड श्रेया घोषाल की आवाज में अगला गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: भाई साहब गोरिया चली नहीं तुमने पुकारा और हम चले आए जी।
1: मिर्ची अंशु।
0: हेलो वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए कहीं चली नहीं गई आपकी जिंदगी में एक बार फिर से जो है ना मैं आ ही गई। अगर सच कहूँ जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों इन पलों की बात करूँ तो ये वक्त जरूर होता है जब मुझे वक्त जो है आपके साथ बिताने का ये मौका मिलता है। हैविंग सेड दैट, अब से कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी धुन आपके बीच पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये बैकग्राउंड स्कोर है तो है किस फिल्म से। अब इस फिल्म के बारे में या इस गाने के बारे में इस म्यूजिक के बारे में मैं कुछ और बात करूं उसके पहले आपको मैं ये फिर से सुना दूं फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड। एंड अगर लगे कि अभी भी सुनते सुनते इस थीम को आपने पहचान लिया है सो 5000 1896 पर मुझे करेक्ट आंसर जो है आप बिल्कुल भेज देना।

0: यार, I absolutely love this man. इससे soothing, इससे खूबसूरत कोई धुन हो तो वो क्या ही हो. चलिए देखते हैं लोगों का क्या कहना है कि ये है तो है किस फिल्म से.
1: Hi Anshu ji, it's me Sonu Khan and जो फिल्म का म्यूजिक आपने सुनाया है वो है रहना है तेरे दिल में.
2: कैसे मैं कहूँ तुझसे
0: क्या बात है सोनू, आपने तो जेन्युइनली यार चार चांद जो है आई एम प्रीटी श्योर हर एक लिसनर के इस वक्त जिंदगी में है ना, अपनी आवाज से अपने इस टैलेंट से लगा ही दिया. बिल्कुल आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही. अगर हम फिल्म की बात करें तो उसका नाम है रहना है तेरे दिल में. उफ यार, एंड जितने लोगों ने लिखकर भी रिप्लाई किया ना, आपको भी बड़ा वाला थैंक यू, दिल से थैंक यू. वेल एक बात बताऊं, जब साल 2001 में फिल्म रिलीज हुई थी शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बहुत सालों बाद ये फिल्म जो है इतनी बड़ी कल्ट रोमांस बन जाएगी. लेकिन आपको मालूम है इस फिल्म के हिट होने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा तो वो था इस फिल्म के म्यूजिक का. इनिशियली हरीश जयराज के इस म्यूजिक ने शायद उतना कमाल ना किया, क्योंकि फिल्म जो है अपने रिलीज के बाद इंस्टेंटली हिट नहीं हुई. हिट फिल्म तब हुई जब ग्रेजुअली इसका गाना टाइम एंड अगेन सुने जाने लगा. इसके म्यूजिक को लोगों ने बार बार अप्रिशिएट करना शुरू किया. एंड सोचिए अपने रिलीज के 6 साल के बाद जब ये फिल्म बार बार टेलीविजन स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, हर जगह देखी गई, गाना जो है वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एल्बम्स बना, 6 साल के बाद इस फिल्म को सुपरहिट मूवी का पूरा वो दर्जा जो है वो दिया गया. कहते हैं ना यार, एक फिल्म को बनाने में जहाँ पर डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रोड्यूसर का हाथ होता है, कलाकार अपना अपना रोल निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गाने का म्यूजिक जो होता है ना, मतलब एक फिल्म का म्यूजिक जो होता है वो फिल्म का सोल माना जाता है. एंड ये बात जो है ये फिल्म हमें ज़रूर बताती है. चलिए जी, इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को सोनू निगम एंड कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में आपके बीच पेश करते हैं. एन्जॉय. कुछ देर में होंगी और भी बातें. बंदी का नाम अंशु.
3: मुझे कहना

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है।
3: भाई मानो को मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्या, क्यों आवाजें आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से, और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
2: आपने सही कह रहे।
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है आपसे।
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: Okay. I love you too.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
8: Happy taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
7: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health. Because आप deserve करते हैं best care.
7: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
10: Visual media partner Rehab Media.
7: Production partner Symphony. The Mentalist Suhani Shah.

अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ है ना, आवारापन टू से ये गाना क्या प्यारा गाना है यार। मैं सच कहूँ जब जब ये गाना मैं सुनती हूँ ना, जहाँ पे एक तरफ एक्साइटमेंट होती है कि भाई साहब एक बार फिर से 90s के उस एरा का, या कहूँ अर्ली 2000s के उस माहौल को दोबारा जीने का मौका मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान हाशमी भाई सारी स्टार लेगेसी एक तरफ, और ये शख्स ये बंदा जो है ना एक तरफ। एंड कहते हैं ना यार, अपना परफॉर्मेंस तो इस कमाल तरह से दो कि तुम्हारी एब्सेंस जो है वो लोगों को फील हो, वो महसूस हो। एंड इमरान हाशमी जो है बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हाँ एक जगह ऐसी है जहां पर अब जो है ना आपकी एब्सेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, क्योंकि कनेक्टिविटी वहां पर भी आप तक पहुंचती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोगों के अंदर वो तलब होती है जब आप आसमान में ऊपर उड़ रहे होते हैं कि भाई ये फोन वाला कीड़ा जो है ना, मैं इसके साथ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यानी कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, वो फीजिबिलिटी की बात करूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स तक पहुंचने की बात करूँ, वो 3-4 घंटे का सफर या जितनी देर भी आप आसमान में उड़ रहे होते हैं, जब कनेक्टिविटी नहीं होती है ना, बेसब्री और बेचैनी किसे कहते हैं, फोन के कीड़े ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कतर की नेशनल एयरलाइंस यानी कि कतर एयरवेज ने ये पूरा का पूरा समाधान जो है ना हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से लेकर आया कि इतना समझ जाए, अगर मैं सिंस अक्टूबर 2024 की बात करूं, आज तक की तारीख को देखने की कोशिश करूं, तो तकरीबन 23 मिलियन पैसेंजर्स ने स्टारलिंक के साथ कनेक्ट किया है वाइल बींग ऑन बोर्ड कतर एयरवेज। एंड बस वो बेसब्री एंड बेचैनी की बात करें तो 35,000 फीट अबव भी हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के चलते ये कनेक्टिविटी बनी रही। क्या बात है यार, जहां पे ना ही सिर्फ हमने अपने लोगों से कनेक्ट किया, ना जाने कितने लाइव मैचेस वीडियोस एंजॉय किया, बल्कि लिटरली आसमान में उड़ते हुए भी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से जिंदगी में शामिल किया। अब एक और अच्छी अगर आपको बात बताने की कोशिश करूं, तो अब कतर एयरवेज की 150 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो है वो स्टारलिंग इक्विप्ड है। इनफैक्ट अगर वर्ल्ड की पहली स्टारलिंग इक्विप्ड बोइंग 787-9 की बात करूं, तो वो भी कतर एयरवेज के अड्डे आता है। बढ़िया है जी, आसमान में भी कनेक्टेड है हम, बिल्कुल मेरी तरह विशाल शेखर की आवाज बी प्राक के तड़के के साथ। भाई ये गाना जो है ना आपको सुनना लाजमी है, म्यूजिक एंड आवाज का गजब कॉम्बिनेशन। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

भाई देखो, खाने पीने की जब जब बात होती है ना, मेरी भूख जो है अक्सर दुगनी हो ही जाती है। या तो फिर अंशु अगर खाने पीने की बात कर रही है तो समझ जाओ कि उसके भूख का टाइम जो है ना वो हो ही चुका है। विंग्स एट दैट कोई तो डिश है जिसकी कहानी अपनी जुबानी इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ एक पहेली के जरिए। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है एंड फटाफट से बस मुझे ये बताना है कि ये खाने का आइटम है तो है कौन सा। एंड आई एम प्रीटी श्योर भाई, ये जो है ना आपकी जिंदगी में कभी ना कभी मस्त वाला चस्का लेकर तो जरूर आया होगा। करेक्ट आंसर अगर पहचान जाए 5000018965000018965, आई बी ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। सो हियर वी गो। गोल मटोल सी शक्ल है मेरी, पर रास छुपा है अंदर। गोल मटोल सी शक्ल है मेरी, पर रास छुपा है अंदर। खस्ता खस्ता रूप है मेरा, मसालों का हूं मैं समंदर। चाय मिले तो जोड़ी जमे, चटनी से बढ़ जाए शान। बताओ कौन हूं मैं जिसे देखकर ललचाए हर इंसान। गोल मटोल है भाई, कौन है ये फटाफट से बताएं 5000018965। मीनवाइल सचेत टंडन एंड परंपरा टंडन की आवाज में अगला गाना हो जाए। एंजॉय। बंदीगराम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Well, Bishan Rawal and Jonita Gandhi ki ye khubsurat si awaaz and what a lovely track this from the film Ishq Vishq Rebound. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin haan, sawal dobara aap tak pahuncha doon.
1: Mirchi Anshu.
0: देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उस ऑनलाइन एग्जाम में सवाल दोबारा आए या ना आए, लेकिन अंशु जो है आपको जिंदगी में एक दूसरा मौका जरूर देती है अरे इस सवाल का सही जवाब देने का. और अब से कुछ देर पहले आपके बीच पेश की थी मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पहेली, जिसके अंदर अगर कुछ छुपा था तो सही जवाब कोई तो खाने की खास डिश का. एंड आपसे बस मैंने ये कहा था कि इस पहेली को बुझाना है एंड साथ में मुझे ये बताना है ये खाने की डिश है तो है कौन सी जो आपकी भूख को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाने वाली है. चलिए एक बार फिर से सवाल आपके बीच पेश करती हूँ एंड आपसे कुछ देर बाद सही जवाब भी बताऊंगी. लेकिन अगर आपको लगे पहेली आपने बुझा ली है तो 5000 1896 we will get connected there. I'll be waiting for your correct answers. Gol matol si shakl hai meri par raaz chupa hai andar, khasta khasta roop hai mera masalon ka hoon main samandar, chai mile to jodi jame chutney se badh jaye meri shaan, batao kaun hoon main jise dekh kar lalchaye har ek insaan. 5000 1896 जवाब का इंतजार रहेगा. मीनवाइल बढ़ते हैं अगले आवर की तरफ. एंजॉय.

0: एकता गांधी की खूबसूरत से आवाज, फिल्म का नाम केदारनाथ। लेकिन सच कहूं, जब जब चाय के साथ गर्मा गर्म इसकी प्लेट मेरी आंखों के सामने आया ना भाई, सच कहूं खानों के साथ इश्क जो है ना, बस इसे ही कहते हैं।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, मैंने भरपूर कोशिश की हुई है कि हर दिन मैं तुम्हें उस फूड आइटम, उस डिश की याद जरूर दिलाऊंगी जिसे तुमने अपने डाइट चार्ट से हटा रखा है। भाई, जिंदगी का मतलब है खुश रहना, एंड खुश रहने का मतलब है अच्छा खाना खाना। मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक पहेली, जिसे बुझाकर आपको मुझे बस ये बताना था कि भाई ये डिश है तो है कौन सी। चलिए, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, क्यों ना ये दास्तान एक बार फिर से मैं पेश कर ही दूं। गोल मटोल सी शक्ल है मेरी, पर राज छुपा है अंदर। खस्ता खस्ता रूप है मेरा, मसाले का है समंदर। चाय मिले तो जोड़ी जमे, चटनी से बढ़ जाए शान। बताओ कौन हूँ मैं जिसे देखकर ललचाए हर एक इंसान। वेल, जवाब आए, खूब जवाब आए। चलिए, आपके बीच जो है इन्हें पेश किया जाए।
2: हाय अंशु, दिस इज हलवा पूरी
3: कचोरी।
4: गुड मॉर्निंग अंशु, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यूसुफ विद यू। जो अभी आपने पहली सुनाई उसका जवाब है कचोरी।
0: जिन्होंने हलवा पुड़ी का संकेत हम तक पहुंचाया, इतना ही कहना चाहूंगी कचौड़ी जो है हलवा पुड़ी के साथ मिल जाए तो जरा और अच्छी लगती है। लेकिन सही जवाब जो है इट इज कचौड़ी, एंड 101% कचौड़ी। थैंक यू सो वेरी मच भाई। नाम सुनते ही वो खस्ता क्रिस्पी आउटर लेयर एंड चटपटा अंदर मसाला, एंड हाय साथ में वो इमली और हरी चटनी दही का कॉम्बिनेशन मिले तो बन जाइए राज कचौड़ी। इससे ज्यादा इंसान को चाहिए तो और क्या ही चाहिए। लेकिन आपको पता है ये कचौड़ी की कहानी जो है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इनफैक्ट 1613 में हमारे कोई जैन भाई थे जिनका नाम था बनारसी दास, उन्होंने कचौड़ी की दास्तान इंदौर में लिखी थी। मतलब सदियों पहले कचौड़ी के फैन जो है ना लोग बाग बन ही गए थे। लेकिन चलिए आपसे पूछती हूँ, अगर कतर में मुझे सबसे अच्छी कचौड़ी खानी है तो मुझे कहाँ मिलेगी? प्याज कचौड़ी की बात करूँ या राज कचौड़ी की बात करूँ या खस्ता कचौड़ी की या कोलकाता की वो कचौड़ी की बात करूँ, कुछ भी चलेगा। लेकिन कहाँ जाना चाहिए मुझे? 5000 1896 waiting for your suggestions। Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile सुबोध शर्मा की आवाज में ये अगला brand new track आपके लिए। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक तो सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ,
3: अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर,
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, Power That Saves, distributed by Carmel Group. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव की आवाज में बस मेरा दिल जो है आपकी ओर चले आ, एंड ये अगली बात भी आपके बैंक अकाउंट की तरफ चले आ।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब, सच कह रही हूँ, जिंदगी के वो दिन आने वाले हैं जब कोई तो रंग जो है वो बदलने वाला है, एंड बड़े खूबसूरत तरह से बदलने वाला है। सच कह रही हूँ, जब सैलरी वाले दिन करीब आने लगते हैं ना, और मुझे ये पता हो कि एक्सचेंज के रेट्स जो हैं वो अच्छे खासे चल रहे हैं, तो मेरा दिल इनसे एक ही बात कहता है कि भैया अपना ये सिलसिला जो है ना कुछ दिनों के लिए बरकरार रखना। देखो, हम जो है प्रोग्रेस पे यकीन करने वाले लोग हैं, बढ़ोतरी की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, तो तुम्हें अगर चलने फिरने का मन हो तो आगे बढ़ना, ना बाबा ना रुकना, ना पीछे पलट के देखना। चले देखिए आज आई पे मनी में क्या ही बोलबाला है। हाँ जी, पैसे का बोलबाला है, बड़ा अच्छा बोलबाला है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.23, पाकिस्तानी रुपीस 76.18, लंकन रुपीस बजाते हुए मचाते हुए डंका इट इज 90.57। साथ ही बाबा अगर हम बात करें बांग्लादेशी टाका की, 33.49, एंड नेपाली रुपीज 41.89। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। Enjoy. बंदी का नाम अंशु।

लता मंगेशकर जी, उदित नारायण की आवाज़, क्या प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है। सच कह रही हूँ, ये गाना ना अभी अभी बस मेरे लिए गाया कि भाई कब तक चुप रहोगी। 3 गानों से 15 मिनट से चुप बैठी हूँ, बड़ा लंबा समय हो गया। बोलूँ तो क्या बोलूँ, अब जरा मैं बोलूँ, कुछ आप बोले, क्या कहती पब्लिक। देखो, बोलने का भी मौका देंगे एंड आपको हमसे मुलाकात करने का मौका जो है ना, अब हम और भी ज्यादा देंगे। एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट। अगर अगस्त के आखिरी हफ्ते की बात करें, आपकी और हमारी जिंदगी में अगर कोई अभियान दस्तक देता है तो वो है बैक टू स्कूल। एंड ये बात जहां पर आपको पता है कि किस तरह से कतर के ढेर सारे मॉल्स में बहुत सारे एक्टिवेशन हो रहे हैं, डिस्काउंट, ऑफर्स एंड प्रमोशन है। लेकिन अगर सबसे बड़े सेलिब्रेशन की बात करें, सबसे एंटरटेनिंग सेलिब्रेशन की बात करें, तो भैया ये तड़का जो है ना आपकी जिंदगी में मिर्ची ही लेकर आता है, विद मिर्ची बैक टू स्कूल। एंड बिल्कुल इसका ऐलान मैं कर दूं, ये बारी जो है, ये मौका जो है वो आ ही चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को मिर्ची बैक टू स्कूल इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवाना है, जो कि होगा 27th of August को, बहुत जल्द आपको लोकेशन, डेट, डिटेल्स सब कुछ मिलेंगी। नहीं, तारीख तो मैंने बता दी, दूसरी डिटेल्स मिलेंगी। तो आपको एक ही काम करना है, मुझे जल्दी से मैसेज करना है, अंशु प्लीज शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक, एंड बस मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजती हूँ जिसमें आपको भरनी है डिटेल्स। एंड आपके बच्चे फटाफट से हमारी महफिल की ना ही सिर्फ जान बनेंगे, शान बनेंगे, बल्कि हाँ, कुछ देर, 2 घंटे जब हमारे साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कोहराम जो है ना वो जरा कम बनेंगे। सो मिर्ची बैक टू स्कूल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है रिलीज करने की बारी आ गई है। इफ फील लाइक यू वांट योर किड्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनल इवेंट, मेक श्योर टू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन 5000 1896 एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग योर किड्स। ओ

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
2: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
3: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
2: जैसे
3: तो
2: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
1: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
4: Only on Mirchi, it's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Asi.

0: बलरेखा भरद्वाज की खूबसूरत सी आवाज। भाई साहब सच कहूँ, कुछ गाने जो है ना दिल में लगते हैं, जब जब राघव कौशिक को इन दिनों में सुनने लगी हूँ ना, ये बात और भी ज्यादा महसूस होने लगी है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मुसाफिर कैफे अगर इस सीरीज की हम बात करें, जहाँ पे आपको अगर कोई नजर आए एक बार बहुत कमाल का किरदार निभाते हुए, तो फिर से हैं विक्रांत मासी, विदिका पिंटो एंड इसके साथ ही मखवाना, ये लड़की जो है ना बड़ी कमाल लगती है मेरे को सुधा एंड प्रीति की ये क्या प्यारी सी कहानी, इसमें चंदर का साथ। एंड आई जस्ट लव द सीरीज। अगर इश्क प्यार मोहब्बत पे यकीन रखते हो, ब्रेकअप्स की दास्तां आपके दिल को कहीं ना कहीं तोड़ती है, प्यार जो है आपकी जिंदगी को संवारता है, तो भाई मुसाफिर कैफे एक ऐसी सीरीज है जो आपको देखना है, जरूर देखना। एंड बिलीव मी यार, इस सीरीज में ना प्यार के अलावा रिश्तों की बहुत सारी परख और समझ को ना करीब से देख पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। चलिए जी, आपके वीक डे में एंटरटेनमेंट का तड़का जो है मैंने ऐड कर दिया। भाई साहब एंटरटेनमेंट के लिए क्यों ही सर वीकेंड का इंतजार करना। एक बात याद रखें, जिंदगी जब मौका देना तब अपने दिल से जिंदगी को जीने की भरपूर कोशिश जो है हर दिन करते रहना एंड जरूर करते रहना। चलिए इस पॉजिटिव थॉट के साथ अब जो है मैं फिलहाल निकलूं, मुझे लगी है भूख, खाने की जो है मुझे आ रही है याद। एंड हाँ, गर्मा गर्म पनीर भुर्जी की सब्जी एंड रोटी आज मेरे घर पर बनी है, सो आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। सचिन टंडन की आवाज़ में जाने से पहले एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाते हुए जाती हूँ, बाकी बातें मुलाकातें होंगी कल। टिक के बने रहें, सुनते रहें कदर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
1: वाली बातें कर रहा
2: है? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
5: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो वॉट, एक बड़े इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल, लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स

Energie.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
2: You know, I was very nervous क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं nervous थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
0: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
0: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
0: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
0: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
0: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
0: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा।
0: अरे यार
1: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
0: तो यार ये आपको पहले सोचने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: तुमने आम संगत तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़ मंगाए।
0: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है, सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट। या दिस, चेक दिस आउट नाउ।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा।

ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का वो कट कॉपी पेस्ट है थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है द गाना इज दिस वन

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थरथराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर,
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून के।
4: आंखों में खुली हो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के।
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट.
2: यादों को चिट्ठी.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के. हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ. वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है. मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था. लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी. तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था. बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार. आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास. तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो इस गाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना.

ये लाइन बहुत आप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर। खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या सवाल है?
1: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
2: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची। इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: चेक। यो, दिस वन इज फॉर ऑल द लिटिल रॉक स्टार्स।
6: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। Bags on your shoulders, energy rakhna full. Kyunki Mirchi leke aa raha hai party super cool. Set your dreams, set your goals, confidence ka tool. Ab time aa gaya hai, sabko jana hoga school. So join karo ye party, ye hogi super cool. Cause it's time for Mirchi back to school.
5: Yeah, back to school.
6: Cause it's time for Mirchi back to school.
7: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
8: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है। मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने में।
2: किसी दिन वरदाना आके पूछे पापा एक्टिंग या मैं
3: ये

0: यार ये आवारापन शब्द ही बड़ा अलग है। कभी प्यार से मम्मी पापा बुलाते थे और कभी कोई अंकल टोकते थे तो इसके मतलब बदल जाते थे। फिलहाल आ गए मिर्ची घड़ी में शाम के 4:04 होने को।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और जब हम आपके साथ रेडियो सज्जनों से इतना ही कहना चाहते हैं कि आवारापन शब्द बड़ा अलग है। हमको याद है जब दिन भर क्रिकेट खेल के लौटते तो मम्मी कहती है आ गए आवारा गर्दी करके, लेकिन अगर कोई मोहल्ले का अंकल कहते बड़ा आवारा लड़का है तो भाई कैरेक्टर पे आ जाता था कि मतलब किस तरह का लड़का है। और अगर पापा के सामने बात कह दी गई तो पापा घर आके पहले 2 चमांड मारते थे उसके बाद आगे की बात करते थे। यार मतलब एक जमाना था जब सोसाइटी की बोली गई चीजें इतना इम्पैक्ट करती थी पेरेंट्स को कि पेरेंट्स उस पर तुरंत आगे एक्शन लेते थे। लेकिन थैंक गॉड समय बदला, दौर बदला, अब पेरेंट्स पहले अपने बच्चों की सुनते हैं उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं दोस्त, और समय के साथ ये मौसम भी बदलेगा। आसमानों में सफेद बादलों की हल्की फुल्की डाई यूं तो किसी काम ना आई, और ह्यूमिडिटी ने आज भी हमारे पसीनों को ही छुड़वाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे कतर में सुहेल सीजन की शुरुआत हो गई है। ये वो टाइम है जो अगले 53 दिनों के बीच मौसम को बिल्कुल बदल कर रख देगा। टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा, सुबह शाम काफी ठंडक होने लगेगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, कल से माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू होगा और 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। इतने दिन बिता दिए, अब 2 महीने के लिए सोच रहे हो? फिलहाल अगले 4 घंटे के लिए हमारे साथ अपने टाइम को बुक कर लो। आगे लेके शाम शानदार बातें धुआंधार और कतर के कोने कोने की बातों से लेकर दुनिया में हुई दुनिया की भौचक्की बातें सब कुछ यहीं आप सुन पाते। बस वॉल्यूम बढ़ाओ, कान टिकाओ 89.6 मिर्ची 1 पर। अभी भी मस्त मौला गौरव इज विद यू। हरारा कतीर, इट्स हॉट।

0: Energy. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Navid bala burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
1: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन,
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। चुनो, मैंने तुझसे
1: वाली बातें कर रहा है?
2: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
1: चल काम कर, चल।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

भाई बेबी टच माय बॉडी, कुल मिलाकर कुछ ऐसी फाइट हो गई आज यशस्वी और फर्नांडो की। मस्त मौला गौरव आपको था दें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका आज टेस्ट मैच का, कह सकते हैं दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ और एक बार फिर से सेंचुरी लगाकर पाडिकल ने लगातार दूसरे टेस्ट में सेंचुरी लगाई है। लेकिन हाफ सेंचुरी के बहुत करीब थे यशस्वी जायसवाल जब उनका कंसंट्रेशन बिगड़ा और भाई हो गए क्लीन बोल्ड। फर्नांडो की बॉल पर क्लीन बोल्ड होने के बाद असिता फर्नांडो ने थोड़ा जश्न ज्यादा मनाया, लेकिन जब यशस्वी पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो ऐसा लगा कि कुछ उन्होंने बोला जिस पर यशस्वी घूम के वापस आए और फिर क्या है, दोनों के बीच लड़ाई हुई। यशस्वी ने अपने हेलमेट से फर्नांडो को मारा एंड आई एम श्योर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुआ है एंड जल्द ही दोनों खिलाड़ियों में कुछ ना कुछ तो होगा। वेल वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल इंडियन टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सेकंड टेस्ट के पहले दिन 300 रन 5 विकेट नुकसान पर बनाए जिसमें सेंचुरी है देवदत्त पाडिकल की। हालांकि वो आउट हो गए हैं लेकिन अब पिच पर सारांश जैन एंड ध्रुव जुरेल दोनों के दोनों खेल रहे हैं। उम्मीद है टीम इंडिया स्कोर को 400 के आसपास ले जाएगी ताकि श्रीलंका को बैटिंग पर वो दो बार आउट कर सके। वैसे इसी के बीच मैं आपको बता दूं, दो दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर शानदार बॉलिंग का मुजहरा पेश किया मिचेल स्टार्क ने एंड ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि पहला टेस्ट भले ही हार गए लेकिन हिम्मत अभी भी हमारे अंदर बची है एंड बुरी तरीके से बांग्लादेश को दो दिनों के अंदर ही हरा दिया। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहेंगे कि एक जबरदस्त टेस्ट सीजन चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 में होने वाली है, उसके लिए हर टीम जोखिम से दमखम से खेल रही है और हर जोखिम उठा रही है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बड़ा जोखिम उठा लिया है। इस पर आई एम श्योर मैच रेफरी का कोई बड़ा वाला पनिशमेंट मिलने वाला है। 89.6 मिर्ची 1 पर क्रिकेट वाला सस्ता एक्सपर्ट मस्त मौला गौरव मिर्ची शॉट।

है, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हमारे साथ भी ऐसी बात है जब हम आपसे पहली बार रूबरू हुए थे। वेल, इन सबके बीच मस्त मौला गौरव बस इतना ही बताना चाहता है कि पूरी दुनिया में एक तरह से बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है हर चीज का, लेकिन एक चीज जो हर देश में देखने को मिल रही है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी। यस, लोग अब इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इंतजार जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं, उसके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि भैया अगर पैसे भी बचे और साथ ही साथ एक लंबी लाइफ लॉन्ग वाली चीज मिल जाए तो क्या बुराई है। और मैं आपको बता दूं, यही चीज देखने को मिल रही है जहां पर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैटरी इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, एंड पूरी दुनिया की ये सप्लाई सबसे ज्यादा चाइना से हो रही है, एंड ग्लोबल मार्केट में चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट बूम पर है। ये एक तरह से उनकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी भी है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सजग हो रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं कि अब हमें इसी तरफ दिमाग लगाना है, एंड इससे हम कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन को भी कम कर पाएंगे, तो उसको भी ध्यान दिया जा रहा है। और कतर में, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, कतर नेशनल बैंक ने भी अपने यहां यही बात कही है कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को ध्यान रखते हुए ग्रोइंग स्ट्रेन ऑफ एन इंडस्ट्री, हमें बहुत हाई तरीके से चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट पर ध्यान देना है, एंड आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं कि पूरी दुनिया में ये जो ईवी है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। इसीलिए कतर को भी एज अ बड़ा मार्केट मानते हुए हमारे कतर नेशनल बैंक ने भी इस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, एंड वो आपको मार्केट में नजर आएगी। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, वो दौर आ गया है जब हमें भी आने वाले टाइम में इन इलेक्ट्रिक स्कूटर से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्यार करना होगा, क्योंकि हम प्रकृति के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे, एंड साथ ही साथ अपनी जेब को भी थोड़ा और बचत दे पाएंगे। 89.6 मिर्ची मनी था।

0: 6 decades of excellence in Qatar.
1: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो. 89.6
2: मिर्ची.

0: तो
1: ये सिर्फ कुमार सानू कर सकते हैं ऐसे गाने। 1942 अ लव स्टोरी, आंखों में आज भी अनिल कपूर साहब की पिक्चर आ जाती है। लेकिन फिलहाल वो मौसम जो हमसे रूठा हुआ था वो अब बदलने वाला है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: तापमान सलमान भाई, अब आपका तापमान होगा कम क्योंकि कतर कैलेंडर हाउस ने अनाउंस किया है कि कल यानी कि 24 अगस्त इससे शुरुआत होगी सुहेल सीजन की। एंड राइजिंग ऑफ सुहेल स्टार मतलब पूरे अरेबियन पेनिनसुला की अगर बात की जाए तो अगले 53 डेज, इन द नेक्स्ट 53 डेज यू विल सी अ सीजनल चेंज, जहां पर ग्रेजुअली हर दिन के साथ जो हीट की इंटेंसिटी है टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा और स्पेशली सुबह और शाम रात को इनफैक्ट आपको ये बहुत ज्यादा ड्रॉप दिखना शुरू हो जाएगा। एंड कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये अगले 53 दिनों में 13-13 दिन के जो फेज आने वाले हैं वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले तरफा फेज, फिर जबहा, फिर जुबरा और फिर सरफा। ये सारे फेज में ही 13-13 दिन में आपको टेम्परेचर काफी नीचे जाते दिखेगा। एंड विश्वास कीजिए अगले 53 दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। वेल, एक तरफ स्कूल खुलने वाला है 15 सितंबर का टाइम, जब कतर में आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए जो सुबह 10 से 3:30 बजे तक ब्रेक होता है वो बिल्कुल जो बैन होता है वो भी खुल जाएगा। बस अगले 15-20 दिनों में चीजें बेहतर होंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है और आप भी ऊपर वाले से यही दुआ कीजिए। फिलहाल तापमान अगर दिन के मैक्सिमम की बात की जाए तो आज लगभग पहुंचा है ये एक बार फिर से 41 के आसपास, यानी कि 42 रियल फील के साथ 42 एंड मिनिमम अराउंड 32 आ जाएगा। हवाओं की बात करें तो ये 11 किलोमीटर से भी कम चल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी जरूर बरकरार है 42% पर, इसलिए शाम को थोड़ी और गर्मी फील होगी। 89.6 मिर्ची 1 पर बादशाह शिशक और जुबिन नौटियाल लेकर आए हैं अखलड़ जावे, इट्स हॉट।

0: मामा माशूका मैं मूँ, तुमने बहुत अच्छा गा दिया है राघव चैतन्या के साथ मिलके। फिलहाल के लिए जब गौरव आपके साथ है तो घड़ी की तरफ खबरदार, जो देखा हम समय बता रहे ना, 5:03 से ज्यादा होने को आ रहे।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी, अब जब आ ही गए हैं तो इस घंटे हम और आप मिलकर खेलते हैं वो देवी और सज्जनों जिसे कहते हैं
2: चंकर।
0: आपको बताना होता है ये आवाज सुनकर कि ये किसकी आवाज है, एक आइकॉनिक आवाज जो आपने इससे पहले कई बार सुनी होगी। एक बार और सुना रहा हूँ, एंड टेल मी ये किसकी वॉइस है।
3: इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूँ कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए।
0: स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। बताइए ये किस बड़े एक्टर की आवाज है और ये गा भी अच्छा लेते हैं।
3: इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूँ कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए।
0: आए हाय आए हाय, ये डायलॉग बड़ा आइकॉनिक डायलॉग बन गया था। अब आपको बताना है कि ये किसकी आवाज है जो मैंने अभी सुनाई है।
3: इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूँ कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए।
0: बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस इंसान ने एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, म्यूजिक को डायरेक्ट भी करते हैं और सुपर स्टार है। 5000 1896 पर इससे ज्यादा, अरे यार यूसुफ भाई थोड़ा समय तो लेते हैं। जितनी देर में हमने सवाल पूछा उतनी देर में इनका जवाब भी आ गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है ये किसकी आवाज है जो मैंने अभी अभी आपके कानों तक पहुंचाई है।
3: इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूँ कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए।
0: चलिए जी, मस्मोला गौरव को फिलहाल जवाब देते रहिए 5000 1896 पर वॉइस नोट में, और हम आपको बदले में देव नेगी, पलक मुचाल, कुमार सानू के आवाज में गाना दे रहे हैं मिर्ची चॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga.
0: Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी
3: भैया। इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है।
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत, ठीक है? मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बादशाह एंड अरिजीत सिंह की आवाज में सोलमेट गाना सुनाया आपके उस मेट ने दोस्त ने जो कि मिर्ची पर रोज शाम आता है। कलाम हम जो बोल रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है कि हम आपको एक आवाज सुनाते हैं और आपको पहचानना होता है कौन
1: पहचान कौन।
0: और आज की आवाज कुछ यूं है,
2: इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूँ कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए।
0: स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। कौन है ये?
3: गौरव भाई, ये अनु कपूर जी की आवाज लग रही है।
4: हिमेश रेशमिया। okay. गौरव जी, हिमेश रेशमिया।
5: okay. जी, ये वॉइस हिमेश रेशमिया की है।
0: वेल, जितने लोग पहले तो हिमेश कह रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, उनको तालियां हो जाए भाई। Yes, एक और नाम जो मैं लेना चाहूंगा ये है राकेश जी का। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहूंगा मैं इस इंसान को जिनका नाम है एडम। हाँ जी, अदम, MDS। वेल, कुल मिलाकर भाई आपने सद्दाम भाई, यस सद्दाम भाई बिल्कुल सही बताया है। यूसुफ भाई, आपका सबसे पहले जवाब आया था, यस द राइट आंसर इज हिमेश रेशमिया। आपको कोल्ड एंड फ्लू हो गया है, चलिए ऊपर वाला करे, आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसके लिए थैंकना चाहेंगे स्वाति को जिन्होंने कहा हिमेश रेशमिया, थैंक यू टू सो मच। अजीत भाई जिन्होंने कहा है हिमेश रेशमिया। इसके अलावा राहुल, हिमेश रेशमिया। एंड ये कौन है? ये है तबरेज भाई, यस बिल्कुल सही, हिमेश रेशमिया। इसके अलावा बासित भाई, हिमेश रेशमिया एकदम सही है। अतुल, हिमेश रेशमिया बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग भाई सही जवाब दे रहे हैं लेकिन वॉइस नोट नहीं भेज रहे हैं, हो सकता है बहुत सामने सामने हो। बिल्कुल सही जवाब। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी बारात में इनके गाने बजते हैं ना तो तमंचे पे डिस्को ही हो जाता है। हालांकि ये तमंचे पे डिस्को इनका गाना नहीं है लेकिन इनके गाए गानों पर तमंचे पे डिस्को भी हो जाता है। मिर्ची पर अगला गाना RDB इन इंडिक और रफ्तार मिलकर गा रहे हैं ठकाक। आए हाय, आइए करें हम लोग मिर्ची पे डिस्को तमंचे गाने में।

हाँ जी, और दिल जब तोड़ना है तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम तो आपसे दिल लगा बैठे, और मुझे पता है आप नहीं तोड़ोगे यार। लेकिन दिमाग को एकदम तोड़ मरोड़ देती है अपने एकदम जबरदस्त वाली चीजों से। यस, एंड बात करो मैं वन एंड ओनली दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, और ये होने जा रहा है 25 सितंबर क्यूएनसीसी पर। लेकिन याद रखो, सुहानी शाह का मेंटल शो देखना है तो हमें और आपको कुछ और भी करना होगा, और उसके लिए आपकी बचत मैं कराऊंगा। यस, टिकट्स बुक करनी होगी मेरे दोस्त। हमें पता है कि अगर आपको सुहानी शाह का शो देखने आना है तो उसके लिए 25th ऑफ सितंबर क्यूएनसीसी की वो टिकट्स बुक करनी है जो इस वक्त आपको ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म से मिली है। लेकिन एस सिटी स्नूनू पर आपका एक फायदा है। अगर आप सुहानी शाह के शो की टिकट्स एस सिटी पर बुक कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने बचाए, आप भी बचा लो, 30 कतरी रियाल कैशबैक मिलेगा। यस, यानी कि ये आपके लिए फायदे का सौदा है। एक तो वैसे ही अर्ली बर्ड ऑफर में प्राइसेस कम चल रहे हैं, ऊपर से आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है। सो गो ग्रैब योर टिकट, सेव सम मनी, ताकि वहां पे अटर चटर पटर भी कुछ खाया जाएगा। फिलहाल इन सब के बीच ही बता दूं कि सुहानी शाह के साथ महफिल में चार चांद लगेगी जब म्यूजिक एंड डांस जो चरणाशी भी वहां पर परफॉर्म करेंगे, एंड आई एम श्योर बहुत सुरीली शाम और उससे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली शाम होगी। वी विल ऑल्सो लर्न सम ट्रिक्स एंड आर्ट, लेकिन कैसे उसके लिए तो इंतजार करना है। 25 सितंबर को हमें और आपको मिलना है क्यूएनसीसी में, और तुम आना, अपने दोस्त को भी लेके आना और उनके दोस्तों को भी लेके आना। ये गाना ये नहीं कह रहा, लेकिन हम कह रहे हैं, तुम ही आना बोल रहा है। जुबिन नौटियाल की आवाज है, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
2: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
3: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
2: जैसे
3: तो
2: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केटेड इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
1: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह,

हाँ जी, शहर की लड़की हो या शहर का लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पैसा ही नंबर वन लगता। लेकिन एक चीज एकदम डन है, जिंदगी में आपके लिए पैसे से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पैसे से ही चलता है सर, और उसका सही रेट हम ही लाते। अगर बात करें इस वक्त एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.24 26.24 रुपए भारतीय मुद्रा के, तो वहीं श्रीलंकन रुपीज 90.44। अगर एक कतरी रियाल के बदले हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब 76.19, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.19 इज द रेट फॉर पाकिस्तानी करेंसी। एंड वही तपाई को नेपाल रुपीज का रेट दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.91 का भालचा रेट दाई। हाँ जी, 41.91 का रेट छबाही। अगर इसके बाद हम बात करें बांधु बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.49 तो बाड़ी जी के पैसा भेजी दियो मस्त मोल गौरव के साथ। मिर्ची पे खोई जाओ गाना आ गया मिर्ची पर।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग, मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।

0: है जिंदगी गले लगा ले, और मैं कहता हूँ यशस्वी जायसवाल कल तू भी फर्नांडो को गले लगा ले। यार इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, और इसी टेस्ट मैच के बीच यशस्वी जायसवाल को फर्नांडो ने बोल्ड मारा, और उसके बाद दोनों में कुछ तो क्लैश हुआ। यशस्वी ने हेलमेट से मारा, फर्नांडो ने भी धक्का दे दिया। खैर अभी तो फिलहाल शाम के 6:10 हुए, एक इम्पोर्टेंट सवाल करना।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: एक जमाना था जब इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होती थी, तो हम बस यही मनाते थे जयसूर्या अरविंदा डिसिल्वा बस आउट हो जाएं तो हम लोग मैच निकाल लेंगे। लेकिन आज दौर बदल चुका है। अब हमारी इंडियन टीम भी एकदम मजबूत टीम है और जबरदस्त खेल रहे, लेकिन लड़ाई झगड़ा आपस में बड़ा ही खराब है। मैं इससे बिल्कुल एकदम इत्तफाक नहीं रखता, मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम को आप गुंडा मैन्स गेम मत बनाइए। यशस्वी आपकी गलती है तो बड़ा बन के माफी मांग लीजिए। इन सब के बीच एक छोटा सा सवाल करूंगा, यस, और आपको इसका जवाब देना है कि श्रीलंका का वो कौन सा प्लेयर है जिसका ससुराल इंडिया के तमिलनाडु में है। 5000-1896 वो धुरंधर प्लेयर है, लेजेंडरी प्लेयर है, जिसका ससुराल इंडिया में है। श्रीलंका का वो कौन सा फॉर्मर प्लेयर है जिसका ससुराल इंडिया के तमिलनाडु में है, एंड वो धुरंधर प्लेयर है, इतने कह सकता हूं। अगर याद है तो 5000-1896 पर अपना जवाब भेज दो, हम यहां सबको बता देंगे, और उनके ससुराल में थोड़ा सा ढोल बजवा देंगे। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम ही देख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में देख लो हमें ज्यादा यार।
2: अरे यार
1: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, हेलो। हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज कराए अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना
2: भैया,
1: पैसे
2: भाड़ में गए। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में आवन जावन तो आया गाना और चला भी गया, लेकिन आपके साथ टिका हुआ है। वेल, आज मैं आपसे एक कमाल का सवाल करता हूँ, और कमाल का सवाल ये है कि हमारी इंडियन टीम और श्रीलंकन टीम के बीच में टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। आज पहला दिन था सेकेंड टेस्ट का। टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकन बॉलर फर्नांडो में थोड़ी तनातनी हुई, हेलमेट से मारामारी भी हो गई। वेल, कुल मिलाकर जेंटलमैन्स गेम एक बार फिर से बड़ा नॉन जेंटलमैन गेम बना। इन सब के बीच मैंने आज सवाल दाग दिया कि एक टाइम था जब इंडिया और श्रीलंका के प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छी रिदम के साथ रहते हैं, इनफैक्ट आज भी रह रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर है श्रीलंका का जिसकी शादी इंडिया में हुई। मैंने ही पूछा था कि वो फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर कौन से हैं, और जवाब सिर्फ एक इंसान सही दे पाया है।
1: Hi, this is Arijit. The answer is मुतैया मुरलीधरन।
0: बिल्कुल सही, और जितने लोगों ने अर्जुन रणतुंगा लिखा है भाई गलत है, इट्स मुतैया मुरलीधरन जिन्होंने हमारे तमिलनाडु के चेन्नई की लड़की से शादी की एंड हमारे इंडिया के दामाद बन गए। तो जीजा जी कहेंगे इनको, अगर कुल मिलाकर हम कहना चाहें तो यस, हम आपको बता दें मुतैया मुरलीधरन ने मधी मलार रामा मूर्ति से शादी की, हमारे इंडिया की लड़की है एंड मुतैया मुरलीधरन की वाइफ है, एंड कह सकते हैं कि कमाल के कलाकार बॉलर थे वो, जो शीशे पे भी बॉल को घुमा सकते हैं, यानी कि ग्लासेस पे भी बॉल को टर्न करा सकते हैं। इट्स वन एंड ओनली मुरलीधरन एंड वी हैव सीन हिज मैजिक, एंड हम वो जनरेशन थे जो इनकी बॉलिंग से खौफ खाते थे। अगर पिच पे थोड़ा क्रैक है तो भाई सामने वाली टीम का हालत खराब कर देता, इतना क्रैक करता था कि पूछिए मत। वेल, फिलहाल के लिए बस यही कहूंगा कि क्रिकेट है, कभी कभी एग्रेशन हो जाता है। कल सॉरी बोल दो भाई, खत्म करो मामला यार, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Brands, decades of excellence in Qatar. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाइ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman heavy duty trucks and boom trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: बच्चों तैयार हो, स्कूल जाने की बारी आ गई। कैसी फीलिंग आ रही है?
1: आई एम श्योर ज्यादातर बच्चे बिल्कुल तैयार हैं अपने स्कूल जाने के लिए, एकदम बेकरार हैं। और स्कूल जाने के लिए बच्चों ने जब तैयारी की है तो मस्त मौला गौरव इतने कहेगा, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको ऑल द बेस्ट कह के भेजें। हाँ जी, बच्चे बिल्कुल तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, और उससे भी ज्यादा तैयारी मम्मी पापा कर रहे हैं कि अब निकलो भैया, दो महीने से बहुत धमा चौकड़ी मचाई, अब फाइनली वो टाइम आ गया जब बच्चे जाएंगे स्कूल में, ढेर सारी पढ़ाई करेंगे, माहौल बनेगा और बैक टू स्कूल की वो मस्ती, वो धमाल अब फाइनली उनकी लाइफ में अलग तरीके से होगी। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, पेरेंट्स तैयार हैं, स्कूल्स तैयार हैं, लेकिन एक आखिरी रिचार्ज तो मिर्ची का भी बनता है ना दोस्त, तो हमने बना दिया है। यस, मिर्ची बैक टू स्कूल बैच की तैयारी कर लो, वो पार्टी जिससे हम मिर्ची रिचार्ज भर देंगे। एंड ये जबरदस्त वाली तैयारी मिर्ची ने बहुत पहले से कर रखी है, हर साल हम आपको एकदम चार्जअप करते हैं ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो कोई कंप्लेन बाकी ना रह जाए। एंड बच्चों ने बिल्कुल तैयारी की है, तो इस बार हम आपको बता दें, जंगल जोन हयात प्लाजा मॉल 27th of August। लेकिन उसके लिए आपको मिर्ची को व्हाट्सएप करना है, 5001896 इस दी नंबर याद रखिए, 5001896 पर आपको अपने बच्चे का नाम भेजना है एंड एज भेजनी है, बच्चे का नाम एज, और हम आपको एक ग्रुप में शामिल करेंगे जहां पर बाकी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। बलादना बैक टू स्कूल ड्रिवन बाय सुजुकी तहसीर मोटर, एंड हमारे स्माइल पार्टनर है नसीम हेल्थ केयर, पिज्जा पार्टनर पापा जोन्स, एडवेंचर पार्टनर जंगल जोन, रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट पार्टनर Z5, और ये सब इसीलिए एक हुए हैं ताकि बच्चों के बैक टू स्कूल को यादगार लम्हे के रूप में बदल दें, ताकि बच्चे अब अगले सेशन की जो पढ़ाई है जम के कर सकें और अच्छे मार्क्स कर आगे बढ़ सके। तो चलिए बच्चों, एक बारी तो आना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप करना है मम्मी पापा, इट्स योर ड्यूटी। हाँ जी, 5001896 पर बच्चे का नाम, और हम आपको एक लिंक देंगे, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन,
2: ओके, वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ

0: बच्चों तैयारी हो रही है ना स्कूल जाने की। फिलहाल संजू राठौड़ की आवाज में सारी गाना खत्म हुआ और अपनी ढेर सारी बातें लेकर एक आखिरी घंटे में आ गया है मस्त मौला गौरव। मिर्ची घड़ी का टाइम 7:03 से ज्यादा।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे इस दुनिया में बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है। मुझे याद है, मैं स्कूल के बाहर खड़ा हो गया था और अपने पापा से लड़ रहा था कि मैं स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ घर वापस जाना है। And that was my first day of school.
2: #974 the most trending local news of the day.
0: और शायद ऐसे बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए अब इन नए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने वाले हैं। यस, हम आपको बता दें कतर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन से एक बड़ी खबर आई है। मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी लोलवा बिन राशिद बिन मोहम्मद अल खातर साहब ने बताया है कि 2026-27 ईयर के लिए 6 ब्रांड न्यू स्कूल बिल्कुल तैयार हैं। Yes, बॉयज के लिए जहां अल शखामा और एन खालिद में बने हैं, वहीं गर्ल्स के लिए रफदत अल हमामा, दोहा और मुआइदर में स्कूल्स बने हैं एंड अल धकीरा प्राइमरी स्कूल भी बना है। और इसके अलावा 34 प्रिंसिपल जो हैं उनके शफल होंगे और नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, 17 न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड 17 प्रिंसिपल जिनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है एंड स्कूल्स विल बी एकदम अपग्रेडेड हाई टेक्नोलॉजी वाला। कतर नेशनल विजन 2030 का फुल ऑन पावर मूव जहां पर हाईटेक लैब्स, टॉप टियर एनवायरमेंट एंड बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जमाना हमारा था जब ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखने का एक अलग ही मजा था। एंड मैं बताऊं, मुझे क्लास में एक ड्यूटी जरूर मिलती थी, हैंडराइटिंग ठीक ठाक थी, इस वजह से कि डेट एंड कौन सा सब्जेक्ट है ये गौरव को बार बार लिखना है। कुल मिलाकर यार स्कूल डेज जैसी फीलिंग कुछ और हो ही नहीं सकती। हालांकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कितना भारी बोझ है, लेकिन आज जिंदगी में जो दूसरे काम मिले ना उसके बोझ तले हमें स्कूल की लाइफ सबसे अच्छी और यादगार लगती है। इस उम्मीद में कि आप अपने नए सेशन में नए स्कूल में जा रहे हैं, आप सबको ऑल दी बेस्ट एंड कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग एंड जितनी मस्ती करनी है करो, जितनी पनिशमेंट खानी है करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहो। 89.6 मिर्ची 1 हैप्पी बैक टू स्कूल्स किड्स, इट्स हॉट।

0: Merci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Merci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
3: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी
3: इन्होंने
2: चिल्लाई तो फिर
3: बुरा बहुत होता। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

यार हम लोगों के लिए क्रिकेट ना एक गेम नहीं है यार, उससे ज्यादा है इमोशन है, जुनून है हमारा। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सबकी बात कर लें भाई, हमारे वहाँ क्रिकेट वाकई में पार्क से लेकर गलियों तक, गलियों से लेकर स्टेडियम तक खेला जाता है। टेप बॉल से लेकर रबर बॉल, प्लास्टिक बॉल, सब में हमने क्रिकेट खेला है। एंड हमारे लिए क्रिकेट इमोशन है, और स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम सब यहाँ कतर में रहते हैं, और कतर से ये जो बात सामने आ रही है उससे हमारा दिल गार्डन गार्डन है। कतर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल थानी साहब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में जगह बना ली है। यस, और ये थाईलैंड में हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अब QCA के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये बता रहा है कि कतर अब एक स्ट्रॉन्ग लीप लेने जा रहा है, एक बड़ी छलांग क्रिकेट की दुनिया में। और हम सबको पता है कि गल्फ में भी हमने क्रिकेट को बहुत तेजी से उभरते देखा। UAE की टीम 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेली, और हमने बचपन से कई सारे मैचेस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के UAE में होते देखे हैं, और अब ये कतर में भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कतर बिल्कुल तैयार है। एंड अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में जगह बनाकर कतर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने दिया है कि क्रिकेट वो खेल है जो इतने सारे लोगों को एक साथ लाता है, तो अब कतर भी इस गेम को आगे बढ़ाएगा। एंड वो दिन दूर नहीं जब हम कई बड़े इंटरनेशनल मैचेस, टूर्नामेंट्स देखेंगे। एंड थैंक यू टू कतर, फीफा वर्ल्ड कप के बाद क्या पता T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी मजा हम हमारे कतर में ले आने वाले टाइम में। ऑल द बेस्ट, 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: साथ एक्स्ट्रा ड्रामा इन है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
1: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स एंजॉय डबल डिलाइट ऑफर.
0: टू स्मॉल पिज्जास एट 44, टू मीडियम पिज्जास 66 एंड टू लार्ज पिज्जास एट 99 रियाल्स. पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा. स्माइल पार्टनर नसीम डेंटल सेंटर. हर स्माइल हो परफेक्ट सिर्फ नसीम डेंटल के साथ. विजिट करें मुंतजा या अजीजिया, योर ट्रस्टेड स्माइल पार्टनर. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Chaska.

0: रेडियो कतर, 6 decades of excellence in कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

ये आवाज भूले तो नहीं ना बच्चों, अब भूलना भी नहीं क्योंकि अब इसके दिन पास आ गए। 89.6 मिर्ची वन पर पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही सुकून भरे पल आने वाले, क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, रिमोट पे अपना कब्जा और घर में मम्मियों को मिलेगा मी टाइम। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मौला गौरव बात कर रहा है उस बैक टू स्कूल कैंपेन की जो 2026-27 सीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है। भाई अब फाइनली घर पे थोड़ा समय तो पेरेंट्स को शांति के साथ टीवी पर अपने कब्जे के रूप में मिलेगा, वहीं बच्चों के लिए इमोशनल मोमेंट है वो अभी तक थोड़ी देर और सोने दो, और मम्मी पापा कहते थे ठीक है छोड़ो ना वेकेशन ही चल रहे हैं, लेकिन बच्चों अब बैक टू स्कूल आ गया है, यानी कि कंधे पर बस्तों का बोझ होगा, स्कूल में पढ़ाई का लोड, और शाम को लौटते ही दोस्तों से थोड़ी देर मस्ती के बाद फिर अगले दिन स्कूल जाने की होड़। तो तैयार हो जाओ, आपके लिए आपके बेस्ट डेज आर कमिंग एंड ट्रस्ट मी, आज आपको भले ही ये लोड लगता है बच्चों, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने आज से कई साल पहले स्कूल जाना छोड़ दिया, आज मौका मिले तो वो फिर चले जाएं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सवाल है
1: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
2: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची इट्स हॉट
3: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
4: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

यार मैंने क्लास में अक्सर लोगों से पेन मांगता था। यूं कह ले मैं आदत से मजबूर था, मैं पूरा स्कूल बैग तो लेकर जाता था, उसमें खाने के 2 टिफिन रहते थे, लेकिन कई बार पेंसिल बॉक्स घर पे छूट जाता था। एंड यही आदत थी स्कूल टाइम में, फिर दोस्तों से कहता था भाई 1 मिनट पेन दे देगा, कल तुझे दे देता हूँ। एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी होता जरूर होगा। स्कूल डेज की बात ही अलग होती है यार, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि स्कूल का जो हमारा दौर था वो फिर से कैसे वापस आ सकता है। हम लोग के टाइम में मुझे याद है जेटर पेन होती थी, जिसके लिए बहुत ही खूबसूरत शायरी कही थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे जावेद अख्तर साहब ने। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले, क्योंकि जेटर हमेशा चलता है। खैर कुल मिलाकर पेन की बात से मुझे यही याद आया कि स्कूल में जितनी पढ़ाई कॉपी में होती उससे ज़्यादा मेरे हाथों में कलम के निशान होते थे, और मम्मी रोज़ पूछती थी अरे इतना क्या करते हो कि हाथ में इतने सारे पेन के दाग। यार काश वो दाग एक बार फिर से लग पाए, मैं स्कूल की क्लास में फिर से बैठ पाऊँ, टीचर पढ़ा रहे और मैं पीछे से आवाज़ निकाल, ये सब छूट जाएगा। लेकिन आप अपने उस बचपन को ज़रूर जीना बच्चों, क्योंकि ना एक बार ये दौर निकल जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। इस उम्मीद में कि बैक टू स्कूल के लिए बच्चे तैयार हैं और मिर्ची की पार्टी में आने के लिए बेकरार हैं, जल्दी जल्दी अपने बच्चों का नाम, उनका एज 5001896 पर भेजिए, ताकि हम आपको वो लिंक भेजते रहें जिससे आप हमारी पार्टी के लिए रजिस्टर कर पाओ। यस, बैक टू स्कूल मिर्ची की रिचार्ज पार्टी इज ऑल सेट। आप अपने बच्चों के नाम भेजते रहो 5001896 पर, एंड वी विल टेक देम टू द झिंगाट पार्टी, एंड गाना वहां यही वाला चलाएंगे। 89.6 मिर्ची वन से मी सिंह टटबैल लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से ढेर सारी एनर्जी मस्ती और भरपूर खबरों के साथ यही मिर्ची पर। तब तक अभी भी मां सलामा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन. सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना. गाने का नाम है मूव बॉडी. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर करार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा कम म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
0: नंबर 10.

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में। दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुनाओ। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी। आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग। बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज। इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है। मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है। दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, उनकी कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है काफी है ना, अ नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

0: ट्रेंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहा
4: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
3: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मैं, ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है आपसे।
4: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौर का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग and we listen to the song, let's talk about Banjare, jinka gana Baron mera aur aapka dono ka favorite hai.
2: Mulne saamb saamb rakhe tere jhanjra ke jode.
0: Ye pura gana aage countdown mein feature hone wala hai, but let's talk about these artists. It's a brother duo called Sumit and Anuj jo Kurukshetra jile se aate hain, jinhone Haryanvi music ke towards sabki soch badal di. Rich song writing, very folk storytelling ka unka andaaz hai and gaano ko itna holistic banate hain that you are drawn towards the emotion jo wo express karna chahte hain. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एक बंदी फील कर रही है, जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: God damn, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 5.

0: cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 Haftos se is countdown par barkarar this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometime, jo gaane hame achhe lagne hote hai na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hai. Wo bas humare raaste aa jaate hai. Aise hi maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, विच इज बेसिकली अबाउट वन साइडेड लव. एंड इतने पोएटिक वे में इन्होंने वन साइडेड लव के बारे में बात करी है. यू नो, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर वन साइडेड लव के बारे में बात हुई है. ऑनेस्टली गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है, दैट इज गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है, पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है, अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है शीशा, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring स्वरा वर्मा. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane hum aapke liye laate hain. Connect with me, mera handle hai Instagram par @RJKanika. Koi gaana batana ho, koi suggestions ho, bindaas aake hit me up. Koi sawal hai, bilkul, we welcome it @RJKanika par batao. Main aur mera producer Ashkai, we take your suggestions, recommendations very, very seriously. It's time for what we call... हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा. साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर. अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी. एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर. इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है. किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब. पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग. देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो. यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन. एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है. ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है. ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी. शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है. बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील. तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने, सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे थे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म्स बन रही थी ना, उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें। इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई, इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन,
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
3: रॉन्ग ले रहा हूँ
4: राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो, ओहो व्हाट अ प्राउड फीलिंग है ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके

0: 6 decades of excellence in Qatar.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना आप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हाँ भाई, मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
2: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर वन टू वन बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव माई हैंडल। वहां पे बता देना जो भी बताना है।

बोलती रहती हूँ। दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREY श्रेया विद लव, माय हैंडल। वहां पे बता देना जो भी बताना।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूं कि ना करूं। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पे लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुनकर के फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: ए आओ ना, दिल है बेकरार.
4: नाना

10 सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल. सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल. अब टाइम आ गया है, सबको जाना होगा स्कूल. सो ज्वाइन करो ये

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ओ हो ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
4: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
3: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है ना, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिप सिंक करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिप सिंक करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज़, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज़ कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर, जब लता जी वापस आई, उनसे ये गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में, एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली, और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगी, श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
4: अरे यार
3: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अभी अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़
4: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी, ये थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु वाज आल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वाज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हुई होगी। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई। बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
3: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स में आवो श्रेया के साथ, जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जिनका शायद पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, या फिर अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिनको वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उतर आए लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाते, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये दिल तो कभी करता होगा और सोचता होगा ना ऐसा।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल,
0: कैसे कैसे ख्याल आते हैं। आज ये गाना
1: बनाया गया है मेरे लिए।
0: करेक्ट, तो शायद कोई खास को ये गाना आज आपकी याद दिलाते हैं। On that note, this is Shreya signing off. We'll see you tomorrow. Or, Facebook, Insta pe RJ Shreya would love. That's my handle. Good night.

जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले।